सच साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पंथी कर कर जिनसी माया जिनो पाई।

लोग सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिजग संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया उडे ऊड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया।

सो पुरख निरंजन आर पुरख निरंजन अरगम अगम अपारा सब त्याम है सब त्याम है तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी आऊं तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ध्यावै हर ध्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन भल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी

मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। नाओ जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी शरणा

आया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो सर्वा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह।

सिर ढियाए पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जी जे तुमरे ध्यान कहो नितुड़त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा काल पुरख की देह मो कुटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रूर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुरगवा सर्ग भर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पावते निगट न आवे मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सगे नंगोई सम्मद सत्रह सहस पचावन हाड़ बधी प्रथम सुखदावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल भरी लव लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगत

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दिया भुला दी माफी बख्शना सिमरन जुड़ना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दरे दर कर सचखंड खे परवान करने दरों घरों पावन अटल हुक्म नामे बख्श के ऐसले सुख आसना दी सेवा करन दी आग्या बख्शो भुला चुका दी खिमा बख्शो सही प्यारे जन मिलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ

राख राख वड वडाहे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मिता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगै बसन सुहेला आओद कटह दिन सरैणा रे मन गुर मिलका सुवारे रहा एहो संसार विकार संसेमै तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोही बिहाजो हर गुरते मन बसेरा निज कहर महल

0: पद है। आज दे विद्वान सच के समाप्ति हो चुकी है। चलो सारे मिलके कहिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why?

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

कंतानिकाय वेद प्राण सिमरत शुद्ध अखर किन राम नामिक अखर किन काय जय जीव सावै ताकि महिमा गणि नयावै कांकी एक दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुख मनि सुख अमर प्रभ नाम भगजना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु के सिमरन गर्भ नाम बसाए प्रभु के सिमरन दुख जम न सै प्रभु के सिमरन काल पर हर प्रभु के सिमरन दुश्मन टराय प्रभु सिमरत गज बिघन न लागे प्रभु के सिमरन अन दिन जागे प्रभु के सिमरन पौ

संग जय मार्ग गण जाहिन को सार का नाम उहा संग तो सा जय पड़े मंद गुबार हर का नाम संग उदयारा जहां पंतरा को न से जानु हर का नाम ते नार पछानु जय महाप्यान तप्त बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां तिरखा मन तुझे कर खे ते नानक।

कोट हर दस करत संत दिन रात हर हर औख साध कमात हर जन केर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नो दान मन तन रंग रत रंग एकै नानक जन कै बिरद बब एकै।

पुंधन नवली कर्म कर बवासन ज्ञान मारे संयम असाधन निमक निम कर से घटावे तो पी हो मैं मैल न जावै।

समुचय बहुत सियाणम जमका पव बया पै अनक जतन करत रे सुन ना तरा पै पेका नेका गन्ने बुझ जाए कोट पाव दरगा ने सिद्ध जाए।

छोराय। जे को जन्म मरण तय डरा सा जना की शरणी पराया। जे जन को प्रभु दर्श पे आशा सकल पुरुख में प्रभु। जिस जन को प्रभु दर्श पे आशा नाने ताके बल बल जासा सकल पुरुख में पुरुख प्रधान। सा संजा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब चय ऊंचा। जहाँ का मन हो सकल की रीना। हर हर नाम चिन्ह काट काट चीना। मन अपने देवरा मिटाना पेख्या सकल श्रेष्ठ साधना। सुख दो जन समृष्टता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन को तन तेरो नाओ ने थामे को नाम तेरा थाओ। निमाने को प्रभु तेरो मान। सकल कटा को देवो दान।

आदंत जो राखन हार तस्प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नौनद पावे तस्व मूढ़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंधा जात दूरे जाकी टहल पावे जरगा मान तिसब सारे मुगदिया जान। सदा सदा भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौटि संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो शरणा सुव सिर कर मान जो हवन सो दूर पराना छोड़ जाय जिसका श्रम करे संग।

छपस नाही कद कर छपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापह लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहो गल पात्र कैसे तरया था जाके अंतर बसे प्रभु आप नारे तय धन सह सुमत सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गले ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा निष्कहिए तो समझे पोरा कहाँ विष्ण बद का वैगंग जतन करे तो पे सुर पांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं ओत ऊहा उत गबन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग साई सो आवे नाचीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पितर बसै नंद केल माय रंग रसै दृढ़ कर मान मन है प्रतीत काल न आवे मूढ़ चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चूड़ बेकार मालो उतरो यहू जुगत बिहार ने के

दस बस उलै पछ पावैग बस कर्म खोड गवावैग पीना दे दस पी हर ले तो मुड़ा कहो कह करे जिस चाकर सु नाही चारा तंको कि जैसा दिनम सकारा जाके मन लागा मरब मिठा सर्व सोता हु मन उठा जिस दिन अपना हुक्म लाया सर्व थो ना नितन पाया अगंत साओ अपनी दे रास खाद पीत बरते आनंदो लास अपने अमान कतवार स्वाले अज्ञाने मन रोस करे अपनी प्रतिता भी खोवे बौरस का विश्वास ना होवे

ताबै ज्योतिष असो चरण हार लपट रहो तैन दंदार बटाव सुध लावे ने तक हाथ नया बैके मन हर के नाम के प्रे सुखदाई कर कृपा नानका पले लाई मिथ्या तन तन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बंतर माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्वभस्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता

चरण मिथ्या स्वरण पर निंदा सुनया मिथ्या पर दर्भ को हरया मिथ्या नेत्र पेखत पर तरया रूपाद मिथ्या रसना पूज

गोविंद पदन बिन बिरथे सब काम जय कृपन केन्द्रार्थ धाम धन धन ते धन जय कट बस्यो वरनाओ नानक ताके बल बल जाओ रह

प्रसाद वसा सुख मंदर तिशताय सदा मने अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पहर सिमरत सरसना जय प्रसाद।

सुचेतारि जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सोपर सिमर सदानूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।

प्रभु कृपा तेरे हो हे परगास प्रभु दया ते कमल बेगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए।

अभिमान साधक संघ प्रकटाय सो ज्ञान साधक संघ बोध प्रवनेरा साधसंग सभत नेरा साधक संघ पाय नाम रचन साधक संघ एक ऊपर जतन साधक मामा वर्ण कौन पराने नानक साखी शोभा प्रभ माय समाने साधक संगा गोचर मिलय साधक संघ सदा पर फुलय साधक संगा वह बस पंचा साधसंग मृत रस पुंचा साधसंग वह सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुता वह साधसंग सज मन पाव साधक संग माया ते पिन साधसंग नान प्रभ सो प्रसन्न साधसंग दुश्मन समेत साधु साधु के संग महापनीत साधसंग के सोने बैर साधक संग न बिगा पैर साग संग नाही को मंदा सा सुन जाने परमानंदा साग संग नाही हो ताप साग संग सतै सब आप आप जन सा बढ़ाई नान सा प्रभु बन आई साग संग न कबहू ताव साग संग सदा सुख पावे सा संग बस गोचर लह साधु के संग अजर स्वह साग संग बस थान ऊचय साधु के संग महल पहुचय साधक संग दृढ़ सब धर्म

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जन में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुर सर्व को सुख, ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी सकल के रीना आत्म रथ ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी के सब परमया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को परास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गृह विश्व महा ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेता बंदा

ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अवंते आगत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद।

ब्रह्म ज्ञानी का दस बुढ़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन बाहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे अनदायखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मत कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी के गद ब्रह्म ज्ञानी जान

कई कोटि पुजारी कई कोटि आचार व्यवहारी कई कोटि पे तीर्थवासी कई कोटि बन परम उदासी कई कोटि वेद के श्रोते कई कोटि तपी श्रोते कई कोटि आत्म ते अंतर है कई कोटि कब का विचार है कई कोटि नवतन नाम ते अभिमान करते कांत न पावे कई कोटि पे अभिमानी कई कोटि अंध अज्ञानी कई कोटि कृपन कठोर कई कोटि आवेगातम ने कोर कई कोटि पर दर्भ को हरे कई कोटि पर दुख न करे कई कोटि माया शर्माए कई कोटि परदेश प्रमाय जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोटि सजत जोगी कई कोटि राजे रस भोगी कई कोटि पंखी सर्प पाए कई कोटि पाथर बिरक निभाए कई कोटि पौन पाणी बसुंदर कई कोटि देश भूमंडल कई कोटि सस्य सूर्य नक्षत्र कई कोटि देव दानव इंद्र सुर शतर सकल सम

कई कोट खंड यर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत किन्नो विसार कई बार पसरो पासार सदा सदा एक एकांकार कई कोट किन्ने बोपा प्रवते ब्रह्मा समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानी प्रसोय कई कोट पार ब्रह्म के दातन होता तम प्रकाश

महा क्रोध विकराल कबो सर्व के ओत्रवाल कबो होय बह बटराजा कबो भिखारी नीच का साजा कबो आपके रत में आवे कबो भला भला कहावे जो प्रभु राखे तवीर है गुरु प्रसाद नानक सा चुका है कबो होय पंडित करे बख्यान कबो मोहन तारी लावे चान कब तर तीर्थ स्नान कबो से साधक मुख ज्ञान कबो कीटस पतंग हो ध्यान जोन परमे परमिया नाना रूप जब स्वांगी दिखावे जो प्रभ पावे तिवे न चावे जो तु पावे सोई हो नानक दूजा बना कोय कबो सा संगत पावे उस संत बहु न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत एक रंग सदा बस पार ब्रह्म का संग ज्यो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो सुमाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक।

सुखोय तिका नावरं कंठपुरोय सिमर सिमर सिमर प्रसोय नाने विघ्न लागे कोय उतर मन में कदरंकार कर्म मेरे सदव्यवहारे निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लियो नैनो पे ठाकुर का रंग स्वास संग में सब संग चरण चलो मारो गोविंद मिटे पाप जपिया अरबिंद कर हर कम सर्वनार कथा हर दुर्गा नानक उज्जल मथा बड़पागी ते जन जग

अंदर को थाम में संबंधियों गुरु का शोध मन संबंधियों पखाना विचार तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीप प्रगास गुरु दर्शन देख मन हो विगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे तुम साधु संग्रह जो प्रगटावे तिन संतन के बाचो टूर नन केरल उचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सो प्रभ देवन हार वर त्याग तुत सहज तार जो कज करे सोई सुख

कहे सब कोए मुख उज्जल हर दरगाह सोए एहो व्यापार विरला व्यापारे नाने तंख्या सद बल हरे चरण साध के तोय तोय पियो अरब साध को अपना जियो साध के तोर करो स्नान साधु प्रदाये कुरबान सा सेवा उड़ पागी पाइये साध संगर कीर्तन गाइये अनेक भगंत साधु राखे अर गुण गाये अमृत रस चाके ओठ गाय संत दरियाया सर्व सो नान ते पाया मृत्यु को जीवालन हार पुखे को देवत आधार सर्वधान जाके दृष्टि माए पुरु रेखे का लेना पाए सब के तत्काव करने जोग तत् बिंदु सुरवा न हो जप जप जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यो निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत जने आवे हर प्रवचित भगत भगत सुनिया तैलोए जाके हृदय को होय सत करनी सहायता की रात सत हृदय सत मुख कहत सच दे सत्याकार सतवर्त सचा पैसार पार ब्रह्म जन सतगुर दाता नाने

कारना ना चल करे खिन माए पूर रहे पूर सब ठाए ना नाम कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई साफ करते के सब के ठाऊं जब जब जीवे नान करना हो नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगले कार नाम के तारे प्रियंसा पवन नाम के समुद्र सुन सरवन कर कृपा सपने नाम लाए नाने चौथे पद में सोचन गत पाए रूप सत जाका सत्य स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सजा के बाणी सतपुरख समय सुमाने सतकर्म जाके रचना सत मूल सत सत्युत पत सतकर्णी निर्मल निर्मली जिस बजाय तिसे सपले सतना प्रभु का सुखदाई विश्वास सतना गुरते पाई सत बदन साधु उपदेश सत जन जा कर दे प्रवेश सत नृत बुझे दे कोय नाम जबता की गत होए आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मितगत जिसके से सो करने हार और न बोझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नान ज्योत पावे सो वर्तिया बेसमन बेसम पह बेसमा जन बुझे ते साया स्वाह प्रभु के रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ रहे हो दाते दुख काट न हार जाके संग तरह संसार जनका सेवे सोवड़ पागे जनका संगे एकले विलागे।

ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पधारी, ठाकुर के सेवक कैमर पर तीत, ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जन संग, प्रभु का सेव नाम के रंग, सेवक प्रभु पारण हारा, सेवक की राखे निरंकार, सो सेव जिद्या प्रभु तारे, नानक सो सेव सास सास समारे, अपने जन का परदा ढाके, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने दास को देव बटाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राख्या।

का नाम ले साचे बदे सेवको दे मोह माया के संग न ले प मन में राखे हरे हरे को अंधकार दीपक प्रकाश है नाने परम दुख तैसे न से तब तुम्हें ठंड बरताए आनंद ब्याज नाटे पाए जन्म के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश है पहुँच चुका निरपो है बसे सगल ब्याह मंथ है न से जिसका साधन कृपा तारी सासंग जब नाम मुरारी थित पाए चुके ब्रह्म गमन सुन्ना निकरा जस सर्वन निर्गुण अवसरगन पियो ही कलातार जन सगली मोही अपने जे प्रभा बनाए अपने कीमत आपे पाए अरबन दूजा ना ही कोई सर्व नरंतर को सोए और पोद रव्या रूप रंग पे प्रगा साधु के संग

स्वभा को करा पली करनी सा स्वभा पधार की सरणी अनिको पावे रोग न दाये रोग मट हरे अब खदलाये सर्वदान मेरे नाम निदान जप नानक दरगाह परवान मन प्रभु दुअर के नाय दाव ते आवे ठाए ता को बिघन लागे कोय दा कर दब से हर सोए कलता ती ठंडा रडाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन से पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर दाय बसे अविनाशी को नानक काटे जम बासी तत विचार कह जन साचा जन मरे सो काचो।

काल बटा में मूर्ख मना सो तुम यदि कुटम्बर बिन्ता इंत कहो हो तुम कवन सनाथ है राज रंग माया विस्तार इंत कहो हो कवन छुटकार स्वारी चुटा डम चूठ पासारी जिन दिए तस बुझे न बिगाना न विचार नानक पछताने गुर की मत ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मींदर मन होए तुम्हार उचित चरण कमर राखो मन माहे जन्म जन्म के कल्प जाए

सदा प्रभु के गुण गाव सा प्रभु तुम्हें त्याव चरण कमल सोला के प्रीत भगत करो प्रभु के नित नीत एको टेको आधार नानक मंगे नाम प्रभु सार प्रभु के दृष्टमा सुख होय अर पावे बिरला कोय जिन जाख्या से जिंद्रवतान पूर्ण पुरख ने डोलान सो पर परे प्रेम रस रंग उपदचा उपसाद कै संग पर सुरनान सब त्याग अंतर प्रकाश संधन लिवलाग बड़पागे जपया प्रभ सोए नानक नाम रत सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेवक के नो सदा निहाल

सर्वपूर्वभगवान् सर्वव्याकुण्ठमुक्तमोघपाय एक नम करके गुणगाय अनुकराय भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए भो भोजन का प्रसंगीत रसना जपति हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय से पूर्ण गुरु मंत सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सो नानी प्रगास सुलोक

संकीर्तन कमात जब इसका भरण चेन्ना जापत तब हर सो कैसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन केला वर्तिजा नानी करने हार न दूजा जब हो प्रभु केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस को गनी जाबे कह रहा गम अपार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सब सुभाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब आप अपनी जो तरह तब कवन डर कवन कत डर अपन चलता करने हार नाने ठाकुर गम अपार अविनाशी सुख अपना सुन त जन्म मन को काम बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की रात कहो केस होए जब विगत गोचर प्रभु एका तब चेतर गुप्त कृत पुछ लेखा जब ना निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे

जस्प्रव्राकेत नाइं दुख नाम जब मन हो वसुख चिंता जाय मिटे अहंकार ते जिन को कोई ना पहुचन हार सिर पर ठाटा गुरसूर नाने ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ है चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर अर रूप तन सेवा सेव परवान अंतर धाम्य प्रभु प्रधान जिस मन बस सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पे अमरा पद पाया सत्संग नानक त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी

ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसन तरमाए चार कुंडा दिस समाए तिथे पर कोठाओ गुरु प्रसाना ने सुपाओ वेद प्रा सिमरत में देख सस्य सुर्ण कथा।

संत जना का पे खन सा ब्रह्म संत जना के हृदय सब तरम संत जना सुनो सब वचन सर्व व्यापी राम संग रतन जन जाता तिस किए रहत सत वचन साधु सब कह जो जो हो सो ही सुख माने कर्ण कर आपन हार प्रभु जाने।

सर्वनेनापेखनार सकल समोरे जा कातना अपन जसा पे सुना अपन जाने खेर बनाया आज्ञाकारी के ने माया सब के मदा लब तो रह जोग कर्ण सुवापे कह है आगे आवे आगे जाए नानक जा पावे तन लय समाये से हो सुना ही बुरा उरे कहो कने कछ करा अपला कर तू तने किया पै जाने अपनी जी की आप सहायतारी सब साथ उद्भुत अपन संग्राह तक की कदम कही न दाये दूसरो इतना सोजी पाए तिका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख होए आम लाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति।

वनस्पति पूरे कुरका सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोबिंद मनंतर की उतर चिंद आस अनित्या गोह तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सत्संग अगन सागर तरह हरदन के परल्यो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित्त बहो नारायण एक एक रूप जाके रंग आने

कृप हमारे प्रभु के तुत करो संत में सावधान एकाग्र चेत सुख मने सह गोविंद गुरु नाम जिसमन बस सोत निदान सर्वेच्छाता के पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

कहते क्या छेज देश है, क्या भेज भेस है, क्या गांज कर्म है, क्या भेज अपांज भरम है, क्या भेज लोक है, क्या देत सो कह, क्या भूत भरण है, क्या विभूत करण है,

त्रिमुक्त विभूत है, परभुक्त प्रभा है, सजुगत सुधा है, सदैव वंश रूप है, भेदी रूप है, समाहतो पराज है, सदा सर्वसाज है, समाहतल सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओवं आदि रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे अगंजे गादे सुभंग सर्वभागे सु सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, छेज है, अछूत है, के नरकंग प्रनास है, पृथ्वी अनुप्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, परजुगते अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है।

अपार आडीठ धर्म आतटीठ कर्म आन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत वे प्रसाद करणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है।

0: पहले के लिखे टूडे असरा जी की धुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर अपने दो हरी छदवार, जिन मानस ते देवते की कर्तव लागी वार। महला दूजा,
1: जे सौ चंदा को है सूर चढ़े हजार, इत चंदन होंदे गुर बिन कोर अंधार। महला पहला, नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचे।

पड़ गड्डी लजिए पड़ पड़िए सा पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खा पड़िए जेते बरस बस पड़िए जेते माँ पड़ी जेते यार जा पड़िए सीते सा।

सो साहेब सदा संभालिया है जित की तपाई अपना सा काल पूरी क्यों काली है मंदा मुल की चाहिए दे लम्बी नजर ने हाली है जो साहेब लाला हारिया ते वेहा पासा ढाली है किच लाहे ऊपर काली है किच लाहे ऊपर काली है।

0: पर हर्षक कर ले जाए।
1: गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहया समाई।
0: गुरु सर गुरु गोरख परमा गुरु पार्वती माई।
1: जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई।
2: गुराज दे बजाए सरना जी काय कथा सो मैं विष्णु न जाई।

0: पिछा पछताए
1: मन
0: का वह कर्ण विचार
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: देखो मन जाने मन कोए
2: मन
0: ने सकल भवन की शुद्ध
2: मन ने मोह छोटा न खाए
0: मन ने जम के साथ न जाए
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: देखो मन जाने मन कोए
2: मन ने मार्ग ठाक न पाए
0: मन ने पथ से प्रगट जाए मन ने धर्म से ती संबंध
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: देखो मन जाने मन कोए
3: मन ने

0: असांख चोर रां खोर
1: अमर कर जाए जो
0: असांख गल वढ त्याग माहे
1: असांख पापी पाप कर जाए
0: असांख कूड़ियार कूड़े फिराहे
1: असांख मलेश मल पखाहे।

0: मन प्रणाम निरपेन्द्र काम
1: अतदत प्रजांड मित करते खंड
0: अलिशिया कर्म दशया कर
1: सर्वावर नाड्या अंडड बाड्या
0: चति चंत्र प्रसाद के विधि कर दे और आरे बार
1: हरि अंग करिन रामे कामे
0: रंग पुरे चंद चत चक्र करता चत चक्र हटता
1: चत चक्र दाने चत चक्र दाने
0: चत चक्र वर्ती चत चक्र पड़ती
1: चत चक्र पाले चत चक्र काले
0: चत चक्र पासे चत चक्र वासे।

0: भगवती चंद पाए प्रसाद करते के अच्छे देश है के अपन पेच है
1: क्या गज कर में क्या पांच पर में
0: क्या पेच लोके किया पेच लोके सो के
1: क्या दूध बनना है के प्रभुत करना
0: है राजन कुर्बा है के तरमंग तो या है
1: क्या सो बनना है के सर्वा बनना है
0: के जगतम के

0: जहूरा के हाजर पगवती चांदवाय प्रसाद के जहूरा के हाजर दूर है
1: हमें सो सलाम है सो कलाम है
0: कि साए दिमाग है कि हुस्न चिराग है
1: कि कामल करीम है कि राजक रहीम है
0: कि रोजी दहन है कि राजक रहिंद है
1: करीम कमाल है कि हुस्न जमाल है
0: करीम उल कराश है गरीब उल निवास है
1: हरीफ उल सिकन है रासल फिकन है
0: कलम कि पुनास है मुसल निवास है
1: अकंजा गनीम है रजाए करीम है
0: समस्त जवा है कि साहिब करा है
1: कलम कि पुनास है बेस्तुल निवास है
0: ये सर पे गवन है मिश्र रवन है
1: तमाम तमीज है समस्त लजीज है
0: परम परम ईश है समस्त लजीज है
1: अदेसो लेख है मेसो लपेख है
0: जमीनो जमा है मीक लमा है
1: करीम कमाल है कि जोत जमाल है
0: क्या चंद प्रकाश है कि मित्तो सुभाष है
1: क्या जप स्वरूप है कि मित्तो विभूत है
0: क्या मित्तो बसा है कि आत्म प्रभा है
1: क्या चंद अनंग है कि मित्तो अपंग है
0: मद भव चंद भय प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गुण मदान
1: हर भर गंज हर नर पर पांच
0: अंगन प्रणाम मन मन सलाम
1: अनर खंड पर नर मंड
0: अन पवना है मन मन प्रकाश
1: गुण गुण प्रणाम जल सर मदान
0: अंचे चांद गात न पांग
1: अपमा पार गत मित उदार
0: जल खाला मंड दस सपांड
1: जल थल महंत दस विस
0: अन पवनास्त्र तत्व

0: दीर्घकणम अतिदीर्घकणम
1: अनुपन अनंत दाता महंत
0: और मोड बनाशन त्वय प्रसाद करनालय है और कल्य है
1: कलखंडन है महामंडल है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कल कारण है सर्वपार है
0: त्रस्त के चरण है जग के कर्ण है
1: मनमान्य है जग जान्य है
0: सर्वंग पर है सर्वंग का है
1: सर्वनाश है सर्वनाश है
0: करुणाकर है विश्वंभर
1: है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस है
1: तपते पर है करुणाकर है
0: जप जप है थप थप है
1: कृता कृत है
0: मृतामृत है कृतना कृत है
1: अकृता कृत है तरणीतृत है
0: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: अकृता कृत है मृतामृत है
0: अरवा कृत है अमृतामृत है
1: नमनायक है कृकायक है
0: विश्वंभर है करुणालय है
1: नमनायक है सर्वपायक है
0: पंचन है अर्गंजन है
1: प्रापन है जप जापन है
0: अगम कर्ता सर्वाकृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
0: परमात्मा है सर्वात्म है
1: आत्मवस है जस के जस है
0: प्रयाग प्रयाग चांद नमो सूर्य नमो चंद्र

0: चंदर नमस्तोल प्रणामे समस्तोल प्रणासे
1: अगंजनामे समस्तोल निवासे
0: कामं बपुते समस्तोल स्वरूप
1: को कर्म प्रणासी सुधर्मं बपुते
0: सदा सत्तानां सप्तं प्रणासी
1: करीम करिंदा समस्तोल निवासी
0: अजाय बपुते गजाय गरीम
1: हरियं करिय करीम रहीमे
0: चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्रपुगल।

0: अपना जान करो प्रतापारा।
1: हमरे दुष्ट स्वभाव का अवहो आप हा सदा मोहे बचाव हो। सब बैरन को आज संगरिया
2: तुम्हें
1: छाड़ कोई और ना ते आऊं जो बचाओ सो तुम ते पाऊं। आप हाथ दा मुझा बरिया मन काल का त्रास में बरिया
2: हमारे पक्ष से जो करिया।

0: पे किया जाए।
1: अनेक जुनी पर मांगे वे सतगुरु मुक्त न पाए,
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु सब सुनाए।
1: कहना विचार देखो वे सतगुरु मुक्त न पाए,
0: आओ सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी।
1: बाणी त गावो गुरु केरी बाणी सर बाणी,
0: जिनको नजर कर्म होवे हृदय तना समाणी।
1: जीवा अमृत सदा सोरो हर हम जपियो सारंग बाणी,
0: कह नानक सदा गावो यो सच्ची बाणी।
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी,
0: बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख कानी,
0: हर हर ते करे रसना कहया कछु न जानी।
1: चित जिनका हिल्या माया बोलन पैर वाणी,
0: कहना सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी।
1: गुर का शब्द खाना है सीढ़े जित जलाओ,
0: सब रतन जन मन लगाए हो आसमाओ।
1: सब सीती मन मिले सच्चे।

0: आप मुल्क है मुल ना पाया जाए, ऐसा सतगुर जी मिले तिसनु से सौंपिए विचो आप जाए,
1: जिसका जीव तिस मिले रहे हर वसे मन आए।
0: हर आप मुल्क है पाक नौ के नौर का जिन पिल जा पाए,
1: हर आस मेरी मन मन जा रहा, हर आस मेरी मन मन जा रहा, सतगुर ते रास जानी।
0: हर नित जपे हो जियो लौ कटे हो
1: तिहारी, एहो तन तिना मिले हर आपे पाना,
0: कह नानक हर आस मेरी मन हो।

0: सुनिमंतन हरिया हुआ रसना रास समानी
1: सचलानी ताकि गतक ही न जाए
0: जय नाल अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचे सुन नैनो पठाए
1: हरजियो को फांद रखे वाजा पवन बजाया
0: बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रकट किए दसवा गुप्त लिखाया
1: गुरुद्वारे लाए पावनी एक नाथ स्वर दवा दिखाया
0: ते अनेक रूप नौ नवनेत दृष्टांत ना परचाई पाया
1: जय नानक हर प्यारे जियो को फांद रखे वाजा पवन बजाया
0: ए साचे सोए लो साचे कर
1: कावता सोलह कर साचे जिथे सदा सच ते आवे
0: सचो जय याद पावे गुरमुख ना बजावे
1: एओ सच सबन का खसम है जिस पक्षे सोजन पावे
0: कह नाल सच सोए लो साचे गुर गावो अनार सुनो।

भगवान सगल समगरी तुम रे तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी। बोलो जी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फरंगत गुरते अमरदास राम दासे हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये घर नवनिध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसा पात दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगी तरपिता पंथ दिवाली अमृत दे दाते शमशेर बहादुर जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाही जिदे आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी जोत जाहराज हूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर सब थाई होए सहाय चार साहिबजादे साहिब जीत सिंह जी साहिब जुझार सिंह जी साहिब जोरावर सिंह जी साहिब फतेह सिंह जी पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सर्वत्र शहीदो मरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय जिन्हां ने नाम जपया वण के छकिया देख लाई तेग वाही धर्म हित शीस दिते तेना गुरु दे प्रेमियां दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी। श्लोक महला दूजा आपे जाने करिया आप आपे आने रास इसे अगे नानका खिले की चे अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सरबत इसमु खालसे जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी का मन नीवा मत उची मत पदा राखा अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे खालसा जी की देख देख फतेह चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। महाराज सिखा नु सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान खालसा जी को श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के इशनान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पाठ दर्शन दीदार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी कौसर जी तरन तारण जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बौली जी श्री गोविंदवाल जी के इशनान दर्शन दीदार मिले बोलो जी। थम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक डेहरे जी तख्त केसगढ़ साहब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहब जी दमदमे जी दमतान जी मुक्तसर जी पौंटे जी तख्त श्री पटना साहिब हरिमंदर जी दिल्ली महसीसगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सतोह झंडिया साहिबान जी के सुख दे दर्शन दीदार मिले बोलो जी। बबौर साहब जी पंजे साहब जी कपाल मोचन जी रण मोचन जी नानक मत्ते जी तलगंजी जी नानक झीरा जी शिकार घाट जी हीरा घाट जी माता साहिब देवा जी संगत साहब जी माल टेकड़ी साहब जी बसमत नगर दमदमा साहब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी गुरु दी लाडलियां फौजां दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। सरबत समूह खालसे जी को नगारिया निशान साहिबा संजुगा तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब जी के सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी। बोलो जी बोलो जी बोलो जी। श्री वाहिगुरु जी गुरु गरीब नवाज जंतर जामी सचे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र हजूरी विच पंज बाणियां दे नितनेम दी अरदास है जी। बाणी पढ़दिया अनेक प्रकार दियां गलतियां हो गए ने पुल चुक दी खिमा बख्शो बाणी सचखंड विखे प्रवान करो दूरों नेड़ियों आई संगतां दी हाजरियां भरनियां सेवादारां दी सेवा सफली करनी जी। गुरु गरीब नवाज आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद जी देगां सच के हाजर हन आप जी नूं भोग लगे प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो जो भी आप जी दा पवित्र प्रसाद छके सो आप जी दा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे हुण दवाना दी समाप्ति लई श्री मुखवाक बख्श के संगतां नूं नहाल करो जी। गुरु गरीब नवाज अपने साजे नवाजे खालसे पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो खालसे पंथ दी चढ़दी कला रखनी हर मैदान फतेह करना सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाए बंद होवन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा।